जीव करो गरीब निवाज यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज साहेब कुमार साहेब धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज तिनां दे पावन स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे पावन स्थानां दीआं हाजरियां भरदे गुरु कीआं संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे होए बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह जी सतगुरु जी आप नाम जानी जान हो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दे दात कारज राज करनी आसा मनसा पूर्ण करनी हर मैदान कार्य पत्र रखनी यात्रा सफलेख

पौड़ी बटी होना पार तेरा मर्तबा रंग परंग जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जाला सबकी तेरे वो तेरा घर भला तेरे घर आना दबदाए तू

सेना बल्ले हारे, सैदा सेना बल्ले हारे सचिया, सैदा सेना बल्ले हारे तदिया गे अरे दास मारी वायरी तदिया गे अरे दास मारी वायरी जियो पेंड सब तेरा जियो पेंड सब

चतुर्चक्रवर्ते चतुर्चक्रभूते स्वयंभ सुमं सर्वदा संयुक्ते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगांग विभूते देख तेगो फतेह नुसरत बेदंगाप तज आज नान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुज सहाय दरबार मित्र दरबारा सच कमल से निरंकार लक्ष्मी कड़ी तुम्र दरबारा सर्व देवते के नमस्कार दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर अवतार जगमग ज्योत बिराज रही श्री अब चल।

स्वप्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूवृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब था प्यो जह थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जह नेत निगम का हंत मुख चार भगत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप।

जहे अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अभ्यक्त रूप उदार। जय कोट इंद्र रे पार कई ब्रह्म बिसन बेचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल। कई सिंथ बिंथ नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देवाद कुमार कई कृष्ण बिसन अवतार। कई इंद्र बार बुहार कई वेद ओमुख चार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप। कई कोक काव भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूँ कथत ही सो पुराण। कई अग्नहोत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द बाहु संन्यास कहूँ जोग भेष उदास। कहूँ निवली करम करंत कहूँ पौना हार दुरंत कहूँ तीर्थ दान पार कहूँ जग करम उदार। कहूँ अग्न होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमृत रीत कहूँ वेद स्यों विपरीत। कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ करत जल मह जाप कहूँ सहत तन परताप। कहूँ बास बन है करंत कहूँ ताप तन है सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राज रीत उदार।

कई ब्रह्म वेद रटंत, कई सेख नाम उचरंत, बैराग कहूं सन्यास, कहूं फिरत रूप उदास। सब कर्म फोकट जान, सब

खरी अभे खरी अदो खरी अद्वै खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि।

त्वा प्रसाद कबित खुकमल हरि गज गद हा विभूत धारी कि दुआ मसान बास करियो ई करत है। खुकमट बासी लगे ढोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन सदई मरत है। बिंद के सदयता ही जकी बड़ैया देत बंदरा सदीव पाए नंगे फिरत है। अंगनाधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैस कह तरत है। भूत बन चारि छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजय तितु गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच की बड़ैया देत बकुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तेनो जानी बब खानी ना है ऐसना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आद से फिरैया तै तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जो कि जट्टाधारी सत्य साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करोई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज से तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या आद ब्रह्मा से न भेद जारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्ण किते वेद यो पुराण किते सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोन दी मदार किते अश्विनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है। पीरे पिकंबर किते गाने ना परत ये भूम हित होए के फेर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। बान से महीप और दिलीप कच छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप चीक पट वेश पोसती अनेक दानिवावत है। शीस कौ कह भय मल्ल जो पगाढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कौ कह भयो रोगी जो पेडार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हरायो आद ईस कौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस कौ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहाँ भयो भेट जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे बिड पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियो ई करत है। एक पाए ठंडे सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक बाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सौंगी कहूँ जोगिया बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडदारी होय के लोगन ब्रह्मावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सुज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कह भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कह भयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाई अताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पायत अजाप देव पूदना सदीव तुही तु

सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साभिमानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोए रास करहीम ओए दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बात आतस ओ आप को रलाव है अल्लाह अफेक सोई पुराण यो कुरान वही एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे कितने कछ मछ कित उनको करत भज कित अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे कितना बीज अच पच को करेंगे भज।

जलीन ताहि तयो बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वास कित मदीना मक्का निवास के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोध प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोर नमनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न बर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अभेखं अजूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे यं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अचेतं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अकादे अभयाद अद्वय अविनाशी परे यं परा परं पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग गादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न बाते न सत्रे न वित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग फेकंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जोनीय छयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्यादंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग अखंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भ्रमंग सदेवंग।

देह ग्रहं कहूं देह दोखं कहूं औखति रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व के नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार जितरंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग

कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राजसा

छह स्वरूपत वह अनास अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम वेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितर मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नई तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पटंत कई कर्त पांत बांधन विचार नहीं नैकतास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जाचे गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक भग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अघन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्वधर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जुगण जूह जुअंग कंप हो मेर पयाल भुवंग तपता पद सर्व जलेर थलंग धन उछरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूता छेद छयंगन काल पाल दयाल स्वंग जय ठटियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय खेद न भेद छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जय रचियंग छत्रि छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रुभिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जय तातन मातन प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जय रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेर आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी साय दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

चूदमतंगन गाधपयाद नादगतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंधा दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सब तज है एक चित्त कृपा नित को जप है देव याब सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव शुद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिय नराग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोग दाग तक है अभूत भ्रम फेक है न तात माद जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक शेख फेक है सदीव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्ववरण है जिमी जमान के विक सदीव करम भरम है हदवैक है अभेक है अलेख नाथ जानिय सदीव सर्वठौर में विशेख आन मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइय गंज आद देव है कोस कैस पाइय जिमी जमान के विक समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न दात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न चार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न ने है न गे है न दे को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न मात है अखल खंड रूप है अचेत है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलि रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है व्यंत है अनंत तेज जानिय भूम भिज है सदा छिज तेज मानिय न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिय दुख है अदाग है अच्छे प्रताप पेखिय न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग।

गजाधपी नरादपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के।

रूप रागना रेख रंगन जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्तकीट बिखे बस सब ठोर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठोर बिखे रम यो जय चक्र

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र पालक शत्रु पालक दीन दयाल मुकंद। अखो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनं पुष्ट करनं सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व समृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड, भूम का जले थले मैं जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार, आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे के दिन कूट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव ना पावे शिव रुद्र मुख चार। कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार। आद अंत न मध्य जागो भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब निपाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार। कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जीतव कह मरण है कवन सुरक कह नरक। को सुखड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक कव तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन।

कहाँ रंग राजा कवन हरक सुख है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा कवन ऋष्ट को पुष्ट है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

देव सर्वंग विचार जिम की हो आप करते पसार जद अपभूतन भय अनंत तव कहो जथावत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल यद भय भूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जह नेत नेत सब भेद कहत कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता तुरंत अद्वय ना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छय स्वरूप अवचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कह बास तास कह कौन फेक कह नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चयन नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुतंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जेह नेत नेत निश दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख तहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत निश दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बाल गनीमन गारे पछ पशु नक नाक नरा दिव सर्व समय सबको प्रतपारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है प्रदेत नहारे दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमापद भेद कते बेद उचारे रोज ही राज बिलोक दराज करो रोहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग मेव न भेव लख्यु ब्रह्म शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद शिव किन श्री पदमापत पाए आद अनंत गादो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीना नातमा पदा गुख छिद्र छह है लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह भी न स्नेह सबोधन नेह विरक्ता के अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनों कर दय कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सौ भेट ही के बट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा का सपताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो भेद कतेब न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जे को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद अनाद गाद बेगत वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार बावे हिंगुला हिमालय द्यावे।

अब कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहर रच धीनी कहूँ फूल राजा भय बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ।

दुष्ट गवते रहा दुष्ट तोड़ के मैं शरण ते हारी मैं शराब ते हारी दल हो बाबरी दल सर्व उठा मई हो सहारी हो सहारी लोक दल हो बचा योग दल दरबारी हम जग माता ग्रंथ करा पूल न शुद्ध करा करा पूल मिल सकल देह को हर तरह दुष्ट लो देह को शरण दुना दुखी श्री अस्त जब पाए ਜਲ

अथ देवी जुकी उस तत्कथन भुजंग प्रिया छंद तुहि अस्त्रणी शस्त्रणी आप रूपा तुहि अंबका जम्ब हंदी अनुपा तुहि अंबका शीतला तोतला है पृथ्वी भूम आकाश तहि की आय तुहि मुंड मर्दी कपरदी पवानी तुहि कालका जालपा राजधानी महाजोग माया तुहि ईश्वरी है तुहि तेज आकाश थंबो मही है तुहि रिष्टनी पुष्टनी जोग माया तुहि मोसो चौदहों लोक छाया तुहि सुंभ नय सुंभ हंति भवानी तुहि चौदहों लोकी जोत जानी तुहि रिष्टनी पुष्टनी शस्त्रणी है तुहि कष्टनी हरतनी अस्त्रणी है तुहि जोग माया तुहि बागबानी तुहि अंबका जम्ब हा राजधानी महाजोग माया महाराजधानी पवि भावनी पूत भव्यंग भवानी चरी आचरणी खेचनी भूपनी है महाबाणी अपनी रूपनी है महाभैरवी पूत ने श्री पवानी पवि भावनी भव्यंग हरि कृपाणी जया अजया हिंगुला पिंगुला है शिवा शीतला मंगला तोतला है तुहि अक्षरा पक्षरा बुद्ध बिरदया तुहि भैरवी भूपणी सुध सिद्धिया मां बाणी अश्रणी शस्त्रधारी तुहि तीर तलवार काटी कटारी तुहि राजसी सातकी तामसिया तुहि बालका बृदनी अजुआ है तुहि दानवी देवनी जाचनी है तुहि किन्नणी मछनी कछनी है तुहि देवते शेषनी दान वेसा सरह बृष्टनी है तुहि अस्त्र पेशा तुहि राज राजेश्वरी जोग माया महामोसो चौदहों लोक छाया तुहि ब्राह्मी वैष्णवी श्री पवानी तुहि बासवी ईश्वरी करत कियानी तुहि अंबका दुष्ट हा मुंड माली तुहि कष्ट हंती कृपा कै कृपाली तुम्हें ब्राहणी हुए हिरण नाश मार्यो हरण नाश रंग सिंघणी हुए पछार्यो तुम्हें बावनी हुए तिनो लोक मापे तुम्हें देवदानो किए जच थापे तुम्हें राम हुए कै दशा गरीब खंड्यो तुम्हें कृष्ण हुए कंस के चीबी हंड्यो तुम्हें जालपा हुए बड़ा ला छकायो तुम्हें सुंभ नै सुंभ दानो खपायो दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा पार आप हाथ दै राख मोहि मन कर्म बचन विचार जाओ पई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कब हुने त्याऊ आन सुने पहचान न तिन सो लिवला की मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो मा लो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतपरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चलै राख आप मोय अवर न दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान आपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दास जान दै हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बार करो कविता बेदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो हित श्री देवी।

अथ प्रेम कथा कथन कवियो वाच वई हर के संत कबड्डी सुनाऊं तांते प्रभ लोगन रिजवाऊं जो ऐह कथा तनक सुन पावै ताको दोग दूर होए जावै सवैया जैसे त्रिनावत अग को सो बकासुर को बद जामुख फारे।

सवैया छंद पाप समूह बिना सनकाउ कलकी अवतार कहाँ वहेंगे तुर कच्छ तुरंग सपाश पड़ो कलकाड़ कृपान कंपा वहेंगे निकसे जिम के हर परबते तसोफ दिवाल लय पावेंगे पल भाग पया संबल के हर जू हर मंदिर आवहेंगे रूप अनूप स्वरूप महा लख देव अदेव लजा वहेंगे अर मार सुधार कै टार कनो बहरो कल धर्म चला वहेंगे सब साध उबाल लह कर दय दुख आंच ना लागन पावेंगे पल भाग पया संबल के हर जू हर मंदिर आवहेंगे दानव मार अपार बड़े रणजीत इंसान बजावेंगे खल टार हजार करोर किते कल के कल कृत बढ़ावेंगे प्रकट है जित ही तित धर्म दिशा लख पापन पुंज परावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हरजू हर मंदर आवेंगे छीर महादेज दीन दसा लख दीन दयाल सावेंगे खग काढ़ अपांग निसंग हठी रण रंग तुरंग नचावेंगे रिबजीत अजीत अपीत बटे अवनी पै सुबह जस गावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे शेष सुरेश महेश गणेश निशेष भले जस गावेंगे गण भूत परेत पिसाज परी जय सद ननद सुनावेंगे नर नारद तुम्बर किन्नर जच सो बीन प्रबीन बजावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे दाल मृदंग मुचंग उपंग सुरंग से नाथ सुनावेंगे डफ बार तरंग रबाब तुरी रण संख असंख बजावेंगे गण दुंदब ढोलन घोर घनी सोन सुन सत्र सबै मुरछावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तीर तुफंग कमान सुरंग दुरंग निखंग सुनावेंगे बरछी अर बैरख बाण तुजा पट बात लगे फहरावेंगे गण जच भजंग सो किन्नर सेध प्रसिद्ध सबै जस गावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे कौच कृपान कटारी कमान सुरंग निखंग छकावेंगे बरछी अर ढाल गदा परसो कल सूर ते सूल प्रमावेंगे अद क्रुदत वै रण मूर्धन मो सर ओक प्रोक जलावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तेज प्रचंड अखंड मां शब दुर्जन देख परावेंगे जिम पौन प्रचंड बह पतुआ सब आपन ही उड़ जावेंगे बढ़ है जित ही ते धर्म जिसाला कहूँ पाप न ढूंढत पावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे छूटत बान कमानन के रण शाड़ पटवा पहरावेंगे गण वीर बिताल कराल प्रभा रण मूर्धन मद सुहावेंगे गण सिद्ध प्रसिद्ध समृद्ध सनै तर उचाई कह कृत सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे रूप अनूप स्वरूप महा अंग देख अनंग लजावेंगे पव भूत भविख भवान सदा सब ठौर सबै ठहरावेंगे पव पार अपार निवारण को कल की अवतार कहावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे भूम को पार उतारण को बड़ आच बड़ी छपावेंगे खल टार जुझार बरियार हठी कान को खन ज्यू कहरावेंगे कल नारद भूत पिसाज बरी जय पात्र त्रात्र सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे चार कृपान जुझार बड़े रण मद मा छपावेंगे तर लोथ पलोथ पिथार कणी कान की घट ज्यू कहरावेंगे चतुरानन रोद्र चराचर जे जय सद ननद सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तार प्रमाण उचान तुजा लख देव अदेव तरसावेंगे कल की गज गाह गजा बरछी गह पान कृपाण प्रमावेंगे जग पाप समूह बिना सनकाओ कल की कल धर्म जलावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे पान कृपाण अजान पुजा रण रूप मान दिखावेंगे प्रतमान सुजान अप्रमान प्रभा लख ब्योम विमान रजावेंगे गण भूत प्रसाच परेत परी मिल जीत कह गीत गवावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे बाजत डंक अतंक समय रण रंग तुरंग नचावेंगे कस बान कमान गदा बरछी कल सूर त्रिशूल प्रमावेंगे गण देव देव पिसाज परी रण देख सबै ठहरावेंगे गण देव अदेव पिसाज परी रण देख सबै रह सावेंगे पल भाग पया

मोहिनी छंद जय जय देवी पावाणी पवखंडी दुर्गा सर्वाणी केसरिया बाही कौमारी पैखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंग लोकाणी रक्तांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जय बा कौमारी पवपरणी हरणी उद्धारी मृद रूपा पूपा बुद्धाणी जय जम्पै सुदंग सिद्धाणी जगतारी भारी भगतायं करतारी भारी मुक्तायं सुंदर गोफनिया गुरजाणी दे भरणी हरणी पामाणी पिंपरिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग जाराणी अकलंक स्वरूपंग निर्मलियं कण मध्य मानो चंचलियं आसपाणंग माणंग लोकायंग सुख करणी हरणी सोकायंग दुष्ट हंती संतंग उद्धारी अनछेदा पेदा कौमारी आनंदई गिरजा कौमारी अनछेदा पेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृगनैनी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगाछी कड़कछी स्वच्छी हुल्लासी रक्ताली रामा तौलाली मोहनिया माई खंकाली जगदानी मानी पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी माई धर्मांगी मैं खासुर धरणी मैं पाली चिचरासुर हंती खंकाली असपाणी माणी देवाणी जय दाती दुर्गा पामाणी पिंगाछी परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पै हरणी पीमा पामाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दलगाही देवाणी पै खंडी सर्वंग भूताणी जय चंडी मुंडी सत्र हंती जय दाता माता जय अंती संसरणी तरणी लोकाणी पिंपरणी धरणी दैताणी के करणी कारण लोकाणी दुखरणी देवंग इंद्राणी सुंभ हंती जयंती खंकाली कंकड़िया रूपा रक्ताली तोतलिया जयबा सिंधुलिया हिंगुलिया माता पिंगुलिया चंचाली चित्रा चित्रांगी पिंपरिया पीमा सर्वांगी बोध पूपा पूपा जुज्वाली अकलंका माई निर्माली उछलै लंकुड़िया छतराला पिंपरिया भैरो पौहाला जय दाता माता जय दानी लव केसी दुर्गा पामाणी संग मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा छुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सकराणी उद्धारी भारी भगताणी जय माई गाई बेदाणी अनछिद अपेदा खेदाणी पै खरणी सर्वंग संतानी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला शीतला साकणी सिंधुरी सुप्रभा सुप्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधुला दुख हरी सुमिला संभिला सुप्रभा दुधरी भावना पै हरी पूतली पैहरा टाकणी चाकणी काकड़ी सिंधुला दुधरा दुर्मुखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी चापणी चारणी चछरी हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जछणी बरमणी चरमणी परघणी प्रासणी खड़गणी गड़गणी सैथणी सापणी पीमड़ा समदड़ा हिंगुला कार्तकी सोप्रभा अछिदा अधरा मारतकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगला चिकणी चरकटा चरपटा चौंडा अचकड़ा तो प्रसाद अछिदा अपिदा असिता अधरी अकटा अखटा अछटा दुधरी अंजनी अंबका अश्रणी धारणी अंबरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी साकनी शीतला सिंधरी सोप्रभा सांतल सामला तोतला संभरी गंभरी अंबरी अकटा दुसला दुबिखरका दुर्कटा अमिटा भैरवी पैहरी पूछरा पावनी त्रिकुटा चरपटा चामडा मानवी जोबना जय करी जम हरी जालवा तोतला तुंदला दंतली कालका भरमणा निब्रमा भावना पैहरी बर बुधा दातणी सतरणी शैकरी दुर्कटा दुर्भिधा दुधरा दुर्मदी अत्रटा अछटा अजटा अभिधि तंतला अंतला संतला सावजा भीमड़ा पैहरी पूतला भावजा टाकणी साकणी झाकणी काकड़ा किंकड़ी कालका जालबा जय मृड़ा ठिंगुला हिंगुला पिंगुला प्रासणी शस्त्रणी अस्त्रणी सूलणी सासणी कन्निका अन्निका धन्निका तौलरी रक्तका सकतका भगतका जय करी चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी पोगणी रोग हरी कालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंत्री पिंभरी चछणी छिंछला दंतुला दामणी दुर्कटा दुभ्रमा दुध शुद्रिता निद्रका निभ्रिखा निर्गमा कदरका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपला जापणी तिबिसन पत्ता प्रसाद कथता पर जय
कैसे कै पायन प्रभाव चारो जानक निपट अगट समृत सम संपट सुबट विचारो मन मत करह चरण कमलन पर वह मन मत गुंजारो मातृक सपत सपित पितरन कुल चौथों कुली उधारू बिसन पचो काफी ता दिन देह सफल कर जानो जा दिन जगत मात पर फुल्लित वह देह विजय बरदानो ता दिन शस्त्र अस्त्र कट बांधो चंदन चित्र लगाऊ जा कहो नेत निगम कह बोलत तासु बर जपाऊ सो रठा तौ प्रसाद कथना अंतर जामी अभय भवानी अति निरख प्रेम पारस को चित की प्रथा पछानी आपन भगत जान पव खंडन अभय स्वरूप दिखायो चकत रहे पेख मुन जन सोर अजर अमर पद पायो सोभत बामह पान कृपाणी जा तर चाच किन्नर असुरन की सब की क्रिया हिरानी जातन मद की टब कौ खंडियो सुम निसुम संघारे सोई कृपान निदान लगे जगदाहन रहो हमारे जातन बिड़ा लाच चिथरा देख खंडन खंड उड़ाए धूली कारण धूमर लोचन के मासन ग्रिध रजाए राम रसूर कृष्ण बृष्णा देख काल करवा लै कूटे कोट उपाय तहाए सब थाके बिनत है भजन न छुटे सुई तौ प्रसाद कथता सोभत पान कृपान उजारी जातन इंद्र कोट कई खंडे किश बिशन क्रोर त्रिपुरारी जाको राम उचर मुन जन सब सेवत ध्यान लगाए तास तुम राम कृष्ण कई कोटक बार उपाय मिटाए अनुभव रूप स्वरूप अगंजन कहो कवन बिद गई है जहबा सहंसर रटत गुण था कि कब जहवे कब तैया ऊम काश पताल जवन कार चौदह खंड बिहंडे जगमग ज्योत होत पूतल में खंडन अव ब्रह्मंडे सुरठा बिशन पद जय जय रूप अरेख पार जास पाए प्रमाए जय तय भीम को शिव द्वार जास पाए लग्यो निशे सहकार मा तन एक देवते सहंस रूपे पहग जास पाए अनेक किशन राम पाए किते पुन काल पाए बिहान काल को अनकाल कह अन अकलंक मूर्तमान जास पाए पयो सब जग जास पाए बिलान ताय तय अवचार जड़ करतार काहि ना जान नर हर जान काहि ना लेत तय परोस परियो पसु जय मोह बद अचेत राम कृष्ण रसूल को उठ लेत नित प्रतनाओ कहाँ वह अब जियत जग में कहाँ तिन को गाँव सोरठा आस क्यों न पछान ही जो होए है अब है नै फल काहे भजत पाहन तोय कछु फल दै तास सेवा जा सेवत होए पूर्ण काम होए मनसा सगल पूर्ण लेत जा को नाम बिसन पद राम कली तौ प्रसाद ए बितकीनी जबै बढ़ाई रीजे देव दयाल तह ऊपर पूर्ण पुरख सदाई आपन मिले देव दर्शन पयो सिंह करी असवारी लीने छत्र लंकरा कूद नाचत गण दै तारी राम कली चमकत अस्त्र छटा शस्त्रण की बाजत डौर अपार निर्तत पूत प्रेत नाना बेदह डैकत फिरत बैतार कोहकत फिरत काकणी कोहरत डहकत कठन मसान कहरत फेरत गगन रेख दहलत बिटरत ब्योम विवान देवी बाज सारंग बिशन पद तौ प्रसाद कश्वर मांगो पूत सियाने पूत पविक नहीं तुमरी सरसात चरित हम जाने जो वरदान चहो सो मांगो सब हम तुम्हें दीवार कंचन रतन बज्र मुक्ता फल लीजै सकल सुधार पारसनाथ बाज सारंग बिशन पद सब ही पढ़ो वेद विद्या वेद सभी शास्त्र चलाऊं सभी देश जेर कर आपन आपे मता मताऊं कह तथास्तु पई लोभ चंड का तास महाबर दै कै अंतर ध्यान होए गई आपन पार सिंह

पौड़ी सच्चा सावित जिन सचो सच व्रता हयास्ता तिने सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जन कर दे सच वसाया मूर्ख सच ना जानने मन मुखे जन्म गवाया।